मैं तेरा पर्दा नी पानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। आ इक दूजे च समाइए नी आपां दोवें हाणो हाणी।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास करो ओ

दुख सह लियो सिदक ना हारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू। चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू।
1: मम्मी विशेष जी दी रचना चन दी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ। अगली काम्य फल तक हरवंत सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंत सिंह वल्लों एक बार फिर सारे श्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज़ ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च 2 रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

मैनू दे के थोड़ा जहर जावी, नी मैं बुरा बुरिया नू तू हमेशा याद रखी, नी मेरे बेले आबाद ना होवन तू अपने बेले आबाद रखी। जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मेथों वक्ख होवन तो पहला मैनू दे के थोड़ा जहर जावी।

दिन रात मेहनत कर दे हां मजदूर पक्की सरकारां होण जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां।

0: पिरोया करेंगी तू फुला नू बाला बिच जदों परोया करेंगी तू पलकां नू हंजुआ दे नल पिगोया करेंगी तू कर करके मैनू याद रोया करेंगी तू। राख ते मेरी जदों पै जान तेरे पैर राख ते मेरी जे पै जान तेरे पैर तेरी सौ रब तो मंगनी मंगनी है तेरी खैर रब तो सौ तेरी मन मंगनी है तेरी खैर दंदा च उंगलियां नू खबोया करेंगी तू दंदा च उंगलियां नू खबोया करेंगी तू कर करके मैनू याद रोया करेंगी तू कागज ते बन जाएगी मेरी तस्वीर अपने आप कागज ते बन जाएगी मेरी तस्वीर अपने आप कलम नू दवात विच जदों कलम नू दवात विच जदों डुबोया करेंगी तू कर करके मैनू याद रोया करेंगी तू कर करके मैनू याद। आखिरी बंदा दोस्तों कौशल साहब ने लिखा सगों होर भी निखर आउणगे मेरी छोहां दे निशान उपेंद्र कौशल साहब नाभा लिखते ने सगों होर भी निखर आउणगे मेरी छोहां दे निशान कदों सगों होर निखर आउणगे मेरी छोहां दे निशान मल मल के जिस्म नू जदों मल मल के जिस्म नू जदों धोया करेंगी तू कर करके मैनू याद रोया करेंगी तू पलकां नू हंजुआ दे नल पिगोया करेंगी तू हाय कर करके मैनू याद।
1: प्यारे श्रोतो दिलशाद अली जी तो बाद साडी का महफिल दे विच हाजिर हो रहे ने दविंदर कौर जी। दविंदर कौर जी जिहड़े कि अजकल न्यूजीलैंड दे विच रह रहे ने उन्हां दी लिखी हुई एक पुस्तक सदरां दी फुलकारी जिहड़ी आ चुकी है ते इस सदरां दी फुलकारी दे विचों ही वो अपनी एक रचना जिहड़ी आ ओह साडे श्रोतियां दे नाल अज दी गौंदी शाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿੰਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਈ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।

0: डिपेंड करता है। तुसी सारा दिन उस ते गेम्स ही खेल रहे हो या मूवीज ही देख रहे हो या नहीं,
1: जी जी जी
0: तुसी उस ते कुछ अच्छा भी देख सकते हो। तुहानू तुसी पहला तुहानू सीखण जाण लई किते दूर जाना पैंदा सी, हुण तुहानू सारा कुछ घरे ही अवेलेबल है।
1: सारा कुछ हो गया जी।
0: टाइम एक उनू जस्टिफाई करो कि इन्ना टाइम देना है कुछ अच्छा सीखना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, उम्मीद है कि प्रोग्राम तुहानू बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है पालन पोषण जिहड़ा बच्चों का है। और जे इहदे विच सुधार हो सकता है अपनी इस गलबात तो बाद भी थोड़ा बहुत फर्क मोड़ा पवे किसी की जिंदगी, आप समझते हैं कि बहुत कामयाब साडा अज दा ये प्रोग्राम रहा है। तो अखीर विच मैं धन्नवादी हाँ डॉक्टर भावना गुप्ता जी का, टर्नअराउंड एजुकेशनल एंड कंसल्टेंसी सर्विस जलंधर दा, कि उन्होंने अपने कीमती रुझेवे चो समा कढ़िया, दोस्तों नाल सांझ पाई ते इतने बहुमुल्ले विचार सांझे कीते। बहुत
0: धन्यवाद जी तुहाडा सारिआं दा, तुसीं बुलाया इत्थे और मैनूं इह कहिण दा मौका मिलिआ। इह विशा बहुत ही मेरे दिल दे नज़दीक है, क्योंकि मैनूं इह लगदा है कि बच्चे जिहड़े हैगे आ उहनां नूं फुल्लां दी तरह रखना चाहिए और हार्श नहीं होना चाहिए। और मैं ये मैसेज वाकई देना चाहनी हाँ दिलों। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
1: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।